0: पर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहां थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती

0: रेडियो हो।
1: आज अपनी फेर आवेर बे मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी जुनकिरी बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी गोली मो बजे कुस्तु खत्म की बने दिल जार जगर माते रहा खुद मले ये ला ओ पोस्टिंग मेरी बुढ़ी बुढ़ी बंदर इशारे ओ डार्लिंग

ने मो बहरे लड़े हो तोगा खोलना बंदे जो आप धोगा छोड़े दिन्छु सजे दुखा दिन्छु यार मो तो बहरे लड़े दिन्छु गुंद्रुष ने छेड़े मो